0: बिहान को पांच बजी सकते अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग
1: आज श्री सालीभानी साके 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 साठी संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल वैशाख महिनाको 25 गते शुक्रबार तदनुसार मे महिनाको 8 तारिक सन् 2026 ज्येष्ठ कृष्ण

पक्ष षष्ठी तिथि उत्तर साढा नक्षत्र शुक्ल आनन्द आदि योग बब कर्ण आनन्द योगा आज चन्द्रमा मकर राशिमा अवस्थित श्री सूर्य उत्तरायण यो महिना श्री सूर्य मेष राशिमा अवस्थित आज काठमाडौँमा अहिले 5:21 सूर्योदय हुनेछ। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनी कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा झैं अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।